अमेरिकी फौजों को हला के गिरफ्तार करने पर 5 बिलियन तुमन तकरीबन $26,000 हासिल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कार्रवाई कोई और करती है तो इनाम दोगुना कर दिया जाएगा। उनका फौज इसके अलावा इस्तेमाल होने वाले हथियार को इसकी कीमत के दोगुने पर खरीद लेगी। इस माल के नाम से एक फौजी म्यूजियम में फूस करेगी और हीरो को इसी किस्म के मुतबादल हथियार फ्राहम करेगी। अक्रमी ने यह भी दावा किया खत्ते अमरीकी असर रसूख तेज से कम हो गया है। इसकी मिसाल के तौर पर उन्होंने सऊदी अरब तुर्किया और पाकिस्तान की जान से वॉशिंगटन से आजाद तौर पर कायम करता एक दिफाई व सिक्योरिटी मैकेनिज्म का हवाला दिया। उनका मुस्तकबिल में इसके मौसर होने से कतई नजर यह मैकेनिज्म इलाके में अमरीकी मौकफ में आने वाले सवाल की निशानदही करता है। अक्रमियन से पहले इलाकाई दिफाई सिक्योरिटी मैकेनिज्म के तौर पर बयान किया था जो अमरीकी शिरकत के बगैर कायम किया गया। अमेरिका और ईरान नई पाबंदियों से पेशतर दो तरफा इंतबाह जारी कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान पीर के रोज वाशिंगटन की जानब से नई पाबंदियों के ऐलान से पेशतर मुनहरिफ पैगाम का तबादला किया। सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेंसेट ने कहा पाबंदियों तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां शामिल होंगी जो मुमकिन तौर पर ईरान के बड़े तजारती शराकत दारों बशमूल चीन को मुतासर करेंगी। तेहरान ने सामी पाबंदियों को गैर कानून करार दिया जबकि अपने हुर्मुज के जरिए तेल की तरसील बदस्तूर मुतासर हो रही है। बीजिंग जो ईरानी तेल की अक्सरियत खरीदता है ने इस फरकारी पर जोर दिया है। इलाके क्वेन ने हफ्ते को कहा यूक्रेन ड्रोन्स ने समारा इलाके में रूसी ऑनलाइन रिटेलर ओजोन के एक सनती इदारे गोदाम को निशाना बनाया। गवर्नर विया चेस्लावा फिद्रो शेफ ने टेलीग्राम पर कहा रात भर के हमलों में कई अफरा जख्मी हुए। फिदोरी शेफ ने सनती इदारे की शनाख्त जाहिर नहीं की। समारा इलाका मुतद तेल की रिफाइनरीज का घर है जिन्हें बारहा यूक्रेन ने निशाना बनाया है। ओजोन ने टेलीग्राम पर जारी करते एक बयान में कहा चापा फिस्क कस्बे में इसके लॉजिस्टिक सेंटर की कार्रवाइयां हमले के बाद मुअत्तल कर दी गई हैं। यह हमला ओजोन के किसी मरकज पर रिपोर्ट होने वाला पहला हमला था जो उसके बड़े हरीफ पाइल बेरिस को निशाना बनाने में हफ्तों के बाद हुआ। यूक्रेन रूसी इक्तिसादी ढांचों पर हमलों को मास्को की फौजी कार्रवाई की मुआवनत करने वाली तनसीबात के खिलाफ एक वसी मुहिम का हिस्सा करार दिया। रूसी वजारत दफा ने हफ्ते को यह भी कहा कि इसकी फौज ने रात पर 457 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। ये ताजा हमले एक ऐसे वक्त में हुए जब तनाज के दौरान यूक्रेनी ड्रोन हमले रूसी इलाकों बुनियादी ढांचे पर जारी हैं।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: कौमी दारा पर अफाल इंतजाम का कहना है कोलंबियन जलसे के बायस हलाकतों की तादाद 321 तक पहुंच गई, जबकि बोकोटा ने इंसानी इमदाद भेजने पर अंकरा का शुक्रिया अदा किया। UNGRT ने जुम्मे को एक्सपर्ट पोस्ट में कहा 257 अफराद लापता हैं, जबकि 2,84,185 अफराद जो 1,46,188 खानदानों की नुमाइंदगी करते हैं इस आफत से मुतासर हुए हैं। आफत के इंतजामी इदारे के मुताबिक ताजा 3 दादोशुमार कोलंबिया के 15 सूबों और 474 बल्दियात का इहाता करते हैं। अब तक तकरीबन 31,445 घर तबाह, जबकि 1,63,884 नुकसान जदे हैं। मजमुई तौर पर 467 इमारतें गिर चुकी हैं, ज्यादातर काली और पेरेरा में वाकई हैं। दूसरी कोलंबिया ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद भेजने पर तुर्किया का शुक्रिया अदा किया। कोलंबिया की वजारत खारजा ने एक्सपोस्ट पर कहा हमने तुर्की की तरफ से जल्जे से मुतासर अफराद के लिए रवाना करदा इंसानी इमदाद वसूल कर ली है। वजारत ने बताया इस खेप में 1 मेट्रिक टन से ज्यादा खुराक, 9 से ज्यादा कम्बल, 450 किलोग्राम अदविया शामिल थी। वजारत ने कहा हुकूमत तुर्किया अवाम के तआवुन कोलंबिया के लिए इनके अज़्म के शुक्र गुजार हैं। फलस्तीनियों को एक नकबा का सामना है। फलस्तीनी सियासतदान मुस्तफ़ा बरकोती ने खबरदार किया है कि मकबूसा मगरबी किनारे 1948 के बाद से अपने खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो गया है, क्योंकि इसराइल इलाक की तरफ बढ़ रहा है। बरकोती ने इसराइल पर इल्जाम लगाया फलस्तीनियों को उनकी जमीनों से बेघर करने के लिए गैर कानूनी बस्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, इस खतरे को नए नकबा के तौर पर बयान किया। बरकोती के तबसरा बात करो कि बढ़ते तशद्दुद इसराइल पाबंदियों के दरमियान आया है। टिकटॉक ने अमरीकी महकमा इंसाफ के मुकदमे को निपटाने के लिए $400 मिलियन अदा करने पर रजामंदी जाहिर की है, जिसमें इल्जाम था कि कंपनी में फाकी बच्चों की प्राइवेसी कवानीन की खिलाफवर्जी की है। महकमा इंसाफ ने जुम्मे को टिकटॉक फौरी तौर पर $300 मिलियन अदा करेगा और मजीद $100 मिलियन के बाद अदा किए जाएंगे, जबकि इसके पेशरो म्यूजिकल ली के खिलाफ एक सबका कैंसिल डेक्री को

कर दिया जाएगा। अमरीकी मामले अटॉर्नी जनरल स्टैनले ई वुडर जूनी ने एक बयान में कहा, फैसला अमरीकी बच्चों वालदेन के लिए एक बड़ी कामयाबी है। महकमा ने कहा चीज बच्चों के लिए हिफाजती इकदाम को मजबूत करेगा और कंपनियों को सार्फिन की जाती मालूम के तहफ़ का जिम्मेदार हटाने में मदद देगा। 2024 के मुकदमे में इल्जाम था टिकटॉक और बाइट डांस ने एक वफाकी कानून के खिलाफ वर्जी की जो बच्चों को हदफ बनाने वाली एप्स वेबसाइट्स को 13 साल से कम उम्र सार्फिन की जाती मालूम जमा करने से पहले वालदेन की रजामंदी हासिल करने का पाबंद करता है। फ्रांसिस सदारती उम्मीदवार मुदाखलती कार्रवाई का हदफ है जिनके बारे में ख्याल किया जाता है वो रूसी निषाद हैं। फ्रांसिस सदारती उम्मीदवार गैब्रियल अतल को दो नए मुश्तबे रूसी हमायती याफ्ता मुदाखलती कार्रवाई में निशाना बनाया गया जिससे गुज़िश्ता दो हफ्ते में रिपोर्ट करता कार्रवाई की कुल तादाद 4 हो गई। BFM TV ने रिपोर्ट किया जाली खबरें अखबार की सुर्खियां गर्दिश कर रही हैं जिनमें बदनवानी का इल्जाम आयद किया गया है और अतल की सेहत के बारे में खदशात हैं। यहाँ से तैयार करता वीडियो में जराना खाके भी शामिल थे। जैसे जैसे फ्रांसिस सदारती इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं देकर मुमकिन सदारती उम्मीदवारों को भी इसी तरह की मुहिमात का निशाना बनाया गया है जिससे गैर की मुदाखलत के खदशात बढ़ रहे हैं और नौजवान इंजीनियर्स खुद मुख्तार दिफाई निज़ाम की नुमाइश कर रहे हैं। नौजवान तुर्क इंजीनियर्स टेक्नोफेस्ट ब्लू होम लैंड में खुद मुख्तार ज़रे आप टेक्नोलॉजीज की नुमाइश कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी के मनसूबों को ऑपरेशनल दिफाई निज़ाम में तब्दील कर रहा है। फाइनेंस में ज़रे आप रॉकेट गाड़ी खुद मुख्तार टॉर्पेडो तैयार करने वाली टीमें शामिल हैं। टीमें तुर्किया की बढ़ती दिफाई सनत में अपना हिस्सा डाल रही हैं जबकि अमनी तजर्बा भी हासिल कर रही हैं। 4 रोजा इवेंट में तुर्क बहरी प्लेटफॉर्म बगैर पायलट के निजाम हवाई जहाज फजाई दिफाई टेक्नोलॉजी और मिजाइल भी शामिल हैं। ये नुमाइश बहरी दिफाई शोबों में तुर्किया की उभरती हुई सलाहियतों को उजागर करती है। इसके साथ ही सदाई तुर्किया से खबरें खत्म हुई। सामने हम सदाए तुर्किया की उर्दू सर्विस से मुखातिब हैं। लीजिए अब तुर्किया की मायनाज गुलुकारा ज़ेनुक बास्ती फ्रेमन के आवाज़ में एक तुर्की नगमा सुनते हैं। गाने के बोल हैं।

आपने इसके बारे में नज़मों में जरूर पढ़ा होगा, खुशबू में महसूस किया होगा, बागात में देखा होगा। क्या आपको इसका जायका चखने का इत्तफाक हुआ है? गुलाब आपके तस्वर से भी कहीं बढ़कर है। यह हजारा सालों पर महित एक लज्जत, शफा बख्श इलाज और रस्म और रवाज भी है। एक फूल का तस्वर करें जो नज्मों का मौजू रहा है, तस्वीरों का मौजू, खुशबू का मंबा रहा है। इसकी महक एक शहर की पहचान बन चुकी है। इसकी रंगत इश्क मोहब्बत की अलामत है, जहां इस तारीफ का मालिक गुलाब का फूल ही है। लेकिन आज हम आपको गुलाब के एक ऐसे पहलू के बारे में बताएंगे जिससे शायद आप भी मारूफ ना हो, यानी गुलाब बतौर खुराक। तुर्की की अख्तेनिस यानी मेडिटेरेनियन यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर शेमा नूर गुनेश की राय से भरपूर और टीआरटी खबर के लिए और पेजरिकली की तरफ से कलम बंद करदा मजमून से तारीफ पेश खिदमत है। गुलाब एक कदीम फूल है जिसका तल्लुक रोज़ेसिया पौधों की फैमिली से है। इसकी सैकड़ों कुदरती किस्में हजारों की तादाद में हाइब्रिड अकसाम है। तुर्की में इसकी डेढ़ों अकसाम पैदा होती हैं। सफेद गुलाब, क्रिस्प रोज, रोज शिप, एवर ब्लूमिंग रोज, मकामी गुलाबी गुलाब, शिनांग गुलाब वगैरह वगैरह, और खासकर दुनिया भर में मरूफ स्पार्टा गुलाब। शहर स्पार्टा की पहचान गुलाब ही है। त्यौहार हर साल मुनक्कित होते हैं, खेत गुलाबी रंगों में डुबोए जाते हैं, लेकिन गुलाब की अहमियत अब सिर्फ लैंडस्केपिंग और कॉस्मेटिक्स तक महदूद नहीं रही। हालिया वर्षों में इसे जायके के तौर पर भी पहचाना जा रहा है। शेमा नूर गुनेश का कहना है कि गुलाब की इंसानों को इतने अरसे तक अपने शहर में कैद करने की कई अहम वजूहत हैं। इसके खुशबूदार साथ जो तालों पर देर पा असर छोड़ती है, इसकी जाहरी शक्ल जो पेशकश को बढ़ाती है, और इसकी मुनफरद खुशबू। इनके अलावा इसके फेनोलिक और बायोएक्टिव अज्जा की बदौलत हिफ्जान सेहत के खास गुलाब को बादशोर सार्फिन के लिए खास तौर पर पुरकशिश बनाता है। तो किचन में गुलाब का इस्तेमाल कैसे और कहां होता है? गणेश का जवाब इंतहाई जामे है। खुश मेवे की शक्ल में, आटे के मसनूआत मीठे में, मशरूबात में अरके गुलाब के तौर पर, ताज़ा पंखड़ियों की शक्ल में पेशकशों और सेहतमंद कुदरती रंग के तौर पर। ये सदियों से तुर्क खानों में जाम, टर्किश डिलाइट, शरबत, कंपोस्टो, कुलाच, मिठाई, माजून और शुरा यानी मीठी खीर की किस्म में इस्तेमाल होता आ रहा है। गुलाब के फायदे सेहत के काफी हैरत अंगेज है। गुनेश का इस मौजू पर कहना है कि बुलंद सतह की एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी और हयातियाती अज्जा के साथ गुलाब गजाई के लिहाज से एक कीमती खोटनी फूल है। मजीद बनाए इसकी फरख्त बख्श मह की बदौलत से नफसियाती अमराज जैसे जहनी तनाव, सर दर्द और नींद की खराबी के लिए भी बुरकार लाया जाता है। इंसान कदीम जमाने से गुलाब के सेहत के फायदे को दरियाफ्त कर चुका था, जिससे मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ जड़ी बूटियों के इलाज के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। अहदे उस्मानी में भी गुलाब की बेशतर मसनूआत जैसे इसका पेस्ट, सिरप, जाम, अरक, शरबत, तेल और शहद अद्विया के तौर पर तैयार और इस्तेमाल

की जाती थी। श्यामल और गणेश का कहना है कि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए इस चीज का मुशाहदा होता है कि अब सार्फिन अपने खाने पीने के आदात को दोबारा तैयार करने की कोशिश में हैं और नित नए जायके आजमा रहे हैं। इस रुझान से गुलाब को रवायती जदीद दोनों खानों में शामिल होने का मौका मिला है। सोशल मीडिया तरकीबें तैयारी का अवाम की तरफ से पोस्ट करने के अरूज के साथ गुलाब की बुनियाद की हम तरकीबें भी कई गुना बढ़ गई हैं। रेस्टोरेंट में इनका इस्तेमाल रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। इनकी फरोख्त नामियाती और नफीस बाजारों में ज्यादा वसी होती जा रही है। गुलाब आइसक्रीम, गुलाब बिस्किट, गुलाब की पंखड़ी से सजे तुर्क लोकम यानी टर्किश डिलाइट, ये लवाजमात गुलाब अपने महसूस जायके और लज्जत के साथ दस्तरखान की जीनत बन रहे हैं। इस मौजू की माहिर ने मजीद बताते हुए कहा है, इसे न सिर्फ इसकी खुशबूदार खास के लिए बल्कि इसकी बसरी कशिश के लिए भी तरजीह दी जाती है। खुश गुलाब की पंखड़ियों के साथ मलमा टर्किश डिलाइट या मशरूबात मीठे को पेश करते वक्त खुश गुलाब की पंखड़ियों का इस्तेमाल इसकी चंद मिसालें हैं। आखिर में हम ये भी वाजह करते चलें कि तुर्की में गुलाबी बाहर खोदने फूल नहीं, कद्दू के फूल, मोतिया, मुनक्शा, गुले दाऊदी, डेंटलिन और अनार के फूल भी मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ताम हर फूल खाने के काबिल नहीं होता। ऐसे फूलों से इतना बरतना जरूरी है जिनको माहरीन तजवीज़ नहीं करते या जिनके बारे में मतलूबा सतह की मालूमात मौजूद नहीं होती। जब आप अगली बार गुलाब को सूंघेंगे तो आप इसे महज एक फूल के तौर पर नहीं बल्कि जायका शफा के हजारों साल पुरानी रीत की निगाह से भी जरूर देखेंगे। समाप्त करने का शुक्रिया। आइंदा की पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।